कार्यक्रम भजन दीपाञ्जली प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदीका हरेक प्रकारका सामग्रीका लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ।

बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz। कार्यक्रम भजनाञ्जली प्रत्येक मङ्गलबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz।

0: इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्रणाली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री।

नमस्कार आदरणीय श्रोता, जय श्री फुड्स प्रालीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सर्वमङ्गलममा म सभ्यता तिवारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।

0: इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जय

0: कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री।

0: इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्राली का उत्कृष्ट उत्पादन।
0: कार्यक्रम सर्वमंगलम यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: ज्वेलर्स बसंतपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी संपर्क नंबर 5320411 9802076888।
1: जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरी।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: शुक्रपथ न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM AJ 104.8 MHz.

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। आहा, इस समय देखिए दुनिया भर के कितने करोड़ों गीतमाला प्रेमी आकर बैठे हैं सन 1961 की गीतमाला की छाव में। यहाँ हम उस साल के छाव वाले बड़े लाजवाब गीतों का मजा तो लेंगे ही, पर साथ ही साथ सालाना संगीत सीढ़ी के टॉप हिट गीतों की झलकों की बिजलियां भी गिरती रहेंगी हमारे दिल पे। जैसे पायदान नंबर 32 पर फिल्मों की कई बरसों से एक अकेली म्यूजिक डायरेक्ट्रेस उषा खन्ना की ये धुन।

वार्षिक पायदान नंबर 31 पर भी यही देश था, मगर गीत उस जमाने की उस ग्रेट फिल्म का था जिसका हर गीत और एक एक सीन भी आज तक फिल्म प्रेमियों को याद है, जिस देश में गंगा बहती है।

दोस्तों, मैं जानता हूँ कि गीतमाला के सुपरहिट गीतों को भी आप कभी कभी पूरा पूरा भी सुनना चाहते हैं, मगर उन्हें तो आपने हजारों बार रेडियो स्टेशनों पर भी सुना है और सारे गामा के बहुत सारे सिलेक्शंस के सीडीज या MP3s पर भी सुनते ही रहते हैं। तभी तो आपका ये वफादार रेडियो दोस्त अमीन सायानी गीतमाला की छाव में उन्हें झलकों में ढालकर बेलगाम समय उन बड़े ही मधुर गीतों को देता है जिन्हें सालाना संगीत सीढ़ियों की धूप नसीब नहीं हुई और जिन्हें सुनने के लिए हम सबके साथ खुद गीतमाला भी तड़पती रहती है। देखिए कैसे।

ये फिल्म घूंघट ही वो पहली फिल्म थी बहनों और भाइयों जो मुझे रेडियो पब्लिसिस्ट के रूप में साउथ की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शहर मद्रास में खींच लाई। ये खींचना हुआ था मेरे दो भाई समान दोस्त गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार रवि की बदौलत। वाह साहब क्या शान थी वहां की जेमिनी स्टूडियोज की। वहां फिल्मों का हर काम बड़े इंतजाम बड़ी तैयारी बड़ी एफिशिएंसी के साथ होता था। हर चीज ठीक टाइम पर होती थी बिल्कुल कोई लेट नहीं आता था। बड़ी सी बड़ी हीरोइन भी अगर टाल मटोल करती ना तो जेमिनी के ऑफिसर उसके पीछे लग जाते कि अम्मा शूटिंग इज वेटिंग अम्मा कम क्विकली क्विकली इमीडिएटली अम्मा। वो लोग हीरोइनों को अम्मा तो बड़े अदब और बड़े आदर से कहते थे मगर वहां नई नई आई हुई हीरोइन जो थी ना वो जरा कुछ बुरा भी मान जाती कि हाय मुझे अम्मा कह रहा है क्या मैं बुढ़िया लगती हूँ। भाई वाकई बहुत मजा आता था मुझे मद्रास यानी चेन्नई में मगर वैसे बंबई की फिल्म इंडस्ट्री का माहौल भी उन दिनों कुछ कम मजेदार कुछ कम रंगीन नहीं हुआ करता था साहब।

0: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में।
1: का एक बड़ा ही जबरदस्त छांव वाला गीत उस फिल्म का था जिसके जरिए फिल्मी दुनिया के सबसे बहुरंगी हीरो और सिंगर पहली बार म्यूजिक डायरेक्टर बने, जहां बल्कि उस फिल्म में एक गीत उन्होंने लिखा भी। याद है कौन सा?
2: मैं हूँ झुम

0: चला।
1: वैसे झुमरू के बाकी गीतों के शायर थे मजरू सुल्तानपुरी, और उन गीतों में से एक तो किशोर कुमार के ऑल टाइम ग्रेट गीतों में गिना जाता है, जो आप अगले वॉल्यूम नंबर 17 में सुनेंगे। मगर बहनों और भाइयों, यहाँ मैं आपको अपनी एक खास बात बताना चाहता हूँ, जो वैसे गीत माला से भी जुड़ी हुई है। हुआ यह कि गीत माला जैसे रेडियो सिलोन के स्पॉन्सर्ड प्रोग्रामों के लिए और छोटे छोटे कमर्शियल्स के लिए भी भारत से श्रीलंका पैसे भिजवाने में कुछ बंदिशें आने लगी थी। तो मुझे राय दी गई कि भैया अमीन, तुम्हारी रोजी रोटी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए तुम कोई और काम ढूंढो। तो साहब, काफी ढूंढने के बाद मुझे मिल गई एक बहुत बड़ी कंपनी जो कई तरह के साबुन और पकाने और लगाने के तेल बनाती थी और जिसके ऑफिसर्स खुद गीतमाला के फैंस थे। तो वहां के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मुझे न सिर्फ नौकरी मिल गई, बल्कि चूंकि वो लोग न टूथपेस्ट बनाते थे न फिल्में बनाते थे, इसलिए मुझे अपने फ्री टाइम में गीतमाला और फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी करते रहने की इजाजत भी मिल गई। और शुक्र है, मेरा नाता मेरी प्यारी गीतमाला से जारी रहा। मगर वैसे भी दिन भर काम में लगे रहने वाले इस बेचारे अमीन सायानी का काम अब आधी पौनी रातों तक भी फैलने लगा साहब। अरे, एकदम धमाकेदार परेड हो गई मेरी। और जाहिर है बहनों भाइयों, मेरी बीवी को बहुत बुरा लगने लगा कि ये भी कैसी जिंदगी है भाई, तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है और घर वाले कुछ भी नहीं है। बहनों भाइयों, आज वो इस दुनिया में नहीं है, अगर होती ना तो जरूर कहती कि ओहो, तुम नहीं मानोगे, अपनी बातें सबको क्यों बता रहे हो।

देखिए साहब, आज मैंने आपका मजा बदलते रहने के लिए पहले 4 हिट गीतों की झलकें बजा दी और फिर 4 छांव वाले पूरे पूरे गीत बजा दिए। तो अब जरा फिर से बहनों भाइयों पकड़िए स्पीड और फटाफट सुनिए 4 और झलकें जो शुरू होती हैं 1961 की पायदान नंबर 28 से।

हाँ भाई, मुगले आजम के बाकी गीत तो गीतमाला के 1960 के 1960 के सालाना प्रोग्राम में बज चुके थे, बस ये एक गीत सन 61 में आ गया। वैसे 1961 में भी नौशाद साहब और दिलीप कुमार की दो और हिट फिल्में थीं, कोहिनूर और गंगा जमुना।

0: हो लाखों में, भला पाक तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: और साहब उस साल नंबर 25 पर चले जाने के लिए आए थे जबक।

0: अच्छा बहनों भाइयों, अब फिर शुरू होते हैं 1961 के कुछ और खूबसूरत छांव वाले गीत। मगर भाई पहले सुनिए फिल्म संगीत की दुनिया की एक बहुत ही हैरत अंगेज घटना। जी हाँ, दो महान बिछड़े हुए संगीत साथियों के पुनर्मिलन के पहले कदम का हाल है ये। दो बड़े सुरीले साथी दादा सचिन देव बर्मन और हम सब की प्यारी दीदी लता मंगेशकर, दोनों के बीच एक अनबन सी हो गई थी 1957 में, जो आखिर जाकर सुलझी 1963 में। ये उलझन क्या थी ये भी बहनों भाइयों लता जी खुद आपको बताएंगी हमारे एक अगले वॉल्यूम में। लेकिन आपको पता है अनबन के उन 6-7 वर्षों में लता ने कोई भी गाना बर्मन दादा के लिए नहीं गाया। मगर 1960 से कुछ पहले दोनों को फिर मिलाने का एक पहला जबरदस्त कदम आप जानते हैं कैसे उठा, बताइए लता जी।
1: सुलह करवाई इस बात ने कि पंचम बड़ा हो गया।
2: पंचम यानी राहुल देव बर्मन।
1: हाँ, तो वो बड़ा हो गया और उसको म्यूजिक डायरेक्शन के लिए पहली फिल्म मिली छोटे नवाब
2: जी।
1: उसके लिए पंचम ने शास्त्रीय आधार पर एक धुन बनाई और दादा को वो धुन गाकर सुनाई। धुन सुनते ही दादा ने मुझे फोन किया और बोले, देख लोता, हमारा पंचम म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला है, तू उसका एक गाना गाएगा? जरूर गा, हम तेरे को बोलता है। बस उस टेलीफोन ने बरसों की दूरी को पल भर में खत्म कर दिया और मैंने पंचम का वो गाना गाया।

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: और भाई उस फिल्म छोटे नवाब से आरडी बर्मन भी हिट हो गए और पंचम और महमूद से मेरी दोस्ती भी फिट हो गई, क्योंकि उसी फिल्म से लेकर महमूद की प्रोड्यूस की हुई तमाम फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी मैंने ही की थी। और भाई हर फिल्म के रेडियो प्रोग्रामों के लिए वो खुद यानी महमूद खुद मेरे स्टूडियो में आकर धूम मचाते रहे।
2: अमीन भाई हम हमारा माँ बाप के लिए एक बहुत अच्छा बच्चा था।
3: अच्छा?
2: हाँ, बहुत अच्छा बच्चा। मेरे तरफ से मेरा माँ बाप को बहुत फायदा होता था।
3: अच्छा अच्छा, वो कैसे?
2: हमारा घर में एक बार एक मेहमान आया तो दूसरी बार नहीं आता था।
3: अच्छा, वो क्यों महमूद भाई?
2: मेरे को चोरी करने का आदत था अमीन भाई।
3: अरे बाप रे।
2: कोई भी रिश्तेदार है, चाहे मेरा माँ का रिश्तेदार हो, मेरा बाप का रिश्तेदार हो, या दोस्त है, या कोई भी आता था घर में, वो बेचारा रात को सोता था, हम उठ के जाता उसके पॉकेट मार देता।
3: अरे बाप रे, मैं जरा देख लूँ मेरा पॉकेट तो ठीक।
2: आपका पॉकेट? ये अभी देखो, मैं बड़ा हो गया अभी, आजकल पॉकेट नहीं मारता जी, बचपन का बात करता आपको।
3: अच्छा अच्छा,
2: तो एक बार उसका पॉकेट मारा तो दूसरी बार वो मेहमान वापस घर में आके रहता नहीं था। इसलिए मेरे तरफ से मेरे माँ बाप को बहुत फायदा था।
3: बहुत खूब।
1: अच्छा भाई, अब महमूद के बाद दो टॉप के प्लेबैक सिंगर्स की राय सुनिए। किसके बारे में? अजी अपनी यही गीतमाला के बारे में और गीतमाला की छाओं के बारे में भी।

उसी साल की छाओ में सलिल चौधरी और प्रेम धवन और मन्ना डे की कलाओं का एक बहुत ही अमर लाजवाब बे

ओके साहब, अब आ रहा है एक मजेदार फ्लैशबैक उस साल के एक धूमधड़ाकेदार स्टेज शो का, जिसे मैं कंपेयर कर रहा था और जिसमें गेस्ट की हैसियत से तशरीफ लाए थे वो मजेदार मर्दाना हीरो, जिनकी एंट्री फिल्मी दुनिया में 1961 से जरा पहले रिलीज होने वाली फिल्म के जरिए हुई थी। ये थे ही मैन धर्मेंद्र। तो साहब, धर्मेंद्र जी अपने स्टाइल से झूमते झामते स्टेज पर आए और बोले, अजी मैं तो कुछ भी नहीं था और इतना कड़का था कि अक्सर पैदल चलकर मुझे स्टूडियोज के चक्कर लगाने पड़ते थे काम ढूंढने के लिए। वो तो भला हो डायरेक्टर रमेश सहगल का कि उन्होंने अपनी फिल्म शोला और शबनम में मुझे सड़क से उठाकर हीरो बना दिया। मुझे शरारत सूझी और मैंने कहा, धर्मेंद्र जी आ हा, कितनी शुभ सड़क थी वो, जरा उस सड़क का नाम तो बताइए। तो धर्मेंद्र पहले तो बौखलाए, फिर हंसे और फिर हमेशा के लिए मेरे दोस्त बन गए। खैर साहब, वो किस्सा छोड़िए और याद कीजिए कि फिल्म शोला और शबनम में एक नई हीरोइन ने किस नई गायिका की आवाज के सहारे धर्मेंद्र से नयन लड़ाए थे।

0: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। उस जमाने की वो कुछ कुछ नहीं बड़ी सुरीली गायिका थी जगजीत कौर, जिन्होंने आगे चलकर भी कई लाजवाब गीत गाए और फिर उनकी शादी भी हो गई अपने बड़े मशहूर, बड़े शानदार, बड़े टैलेंटेड संगीतकार खय्याम साहब से। अच्छा, अब सुनिए एक और बड़े गुणी, बड़े भावुक संगीतकार के बारे में बहनों भाइयों। ये थे जयदेव, जो पहले नवकेतन के लिए उस्ताद अली अकबर खान के असिस्टेंट बने, फिर 8 फिल्मों में एसडी बर्मन को असिस्ट किया और 3 छोटी फिल्मों में खुद म्यूजिक देने के बाद उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे कामयाब फिल्म मिली हम दोनों, जिसने 1961 में तो धूम मचा दी साहब। उस फिल्म के 2 गीत काफी ऊपर बजे थे गीतमाला की सालाना संगीत श्रेणी पर, मगर 3 गीत जो छांव में रह गए उनमें से एक था
1: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
0: यस देवानंद साहब, मगर वो गीत सुनवाने से पहले मैं जरा

0: सुनने वालों को वॉर्न किए देता हूं कि हम दोनों में देवानंद साहब हर चीज को जिस धुएं में उड़ाते चले गए थे, यानी सिगरेट या सिगार के धुएं में, वो धुआं बड़ा खतरनाक होता है। तो बहनों भाइयों, आप हो सके तो कभी भी सिगरेट, बीड़ी, सिगार, तंबाकू की ज्यादा आदत न डालिए। हाँ, अब सुनिए वो गाना।
1: मैं

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: ओल्ड प्यालेस, शुक्लपथ न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिङ,
2: चिर परिचित, यहाँ श्रेष्ठ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

दसवां अध्याय देवांतक का काशी पर आक्रमण। देवांतक की विशाल सेना ने काशी पर भयंकर रूप में आक्रमण कर दिया, परंतु नारांतक की मृत्यु के कारण निर्भय और अत्यंत उत्साहित हुए काशीवासियों को उनसे विशेष चिंता नहीं हुई। उन्हें विश्वास था कि भगवान विनायक की कृपा से देवांतक का भी विनाश हो जाएगा, इसलिए सभी वीर दैत्य सेना से लोहा लेने के लिए सब प्रकार तैयार थे। काशीराज ने भगवान विनायक की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक समझा। उस समय वे बालकों के साथ खेल रहे थे। महाराज ने उनके चरणों में प्रणाम निवेदन किया। प्रभु, नरांतक का बड़ा भाई देवांतक अपनी सेना के साथ हम पर आक्रमण करने के लिए आ गया है। यह नरांतक से भी अधिक दुर्धर्ष और क्रूर है, इसलिए रक्षा का जो उपाय हो वह कीजिए। भगवान विनायक ने आदेश भरे स्वर में कहा, अपनी सेना को शत्रु के समक्ष भेजो राजन, परंतु ध्यान रहे कि समागत दैत्य के पराभवार्थ कुछ देवियां आ रही हैं। जब वे आ जाएं, तब आपकी सेना उनके पीछे रहती हुई निर्देश पालन करे। महाराज ने अपने प्रधान सेनापति को यह बात समझा दी और तब स्वयं भी रण क्षेत्र के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा दैत्य सेना नरांतक की सेना से भी अधिक एवं समस्त साधनों से संपन्न थी। जिधर दृष्टि डाले उधर ही दैत्य दिखाई देते थे। इस स्थिति ने काशीराज को शंकित और भयभीत बना दिया। शक्तियों की विशाल सेना और पराक्रम। उधर भगवान विनायक ने विशाल रूप धारण कर माता सिद्धि बुद्धि का स्मरण किया। दोनों तुरंत उपस्थित हुई, तभी उन्होंने सिद्धि जी को आदेश दिया, इन दैत्यों के विनाशार्थ एक विशाल सेना की आवश्यकता होगी, साथ ही सैन्य संचालन भी ठीक प्रकार से हो सके इसकी भी व्यवस्था की जाए। आदेश मिलते ही माता सिद्धि देवी ने देवांतक की सेना के निकट जाकर भयंकर गर्जना की, जिससे समस्त दिशाएं एवं धरती आकाश कंपायमान हो गए। उस समय स्त्रियों की 8 विशाल सेनाएं प्रकट हो गई, जिनका नेतृत्व अणिमा आदि प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियां कर रही थी। देवांतक उन नारी सेनाओं को देखकर बहुत घबराया। उसने सोचा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों से युद्ध करना अधिक कठिन है। यदि हम उन्हें जीत भी ले तो कोई यश नहीं मिलेगा। सभी कहेंगे कि यह कैसे वीर हैं जो स्त्रियों से युद्ध करते हैं। इसके विपरीत यदि इनसे हार गए तब तो प्रत्यक्ष ही मरण है, फिर तो वीरता की शान ही समाप्त हो जाएगी, उससे तो नितांत निंदा ही हाथ लगेगी। उसके विचार का अनुमोदन किया एक सेनापति ने, जो स्त्रियों से युद्ध करना ही समझता था। साथ ही उसने यह भी कहा, स्वर्गाधिप, यह सभी स्त्रियां हमें मार डालने या स्वयं मर जाने के लिए प्रस्तुत हैं। यह किसी भी प्रकार से हटने वाली नहीं है, इसीलिए शीघ्र ही हमें अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। तभी एक अन्य सेनापति ने कहा, राजन, इन स्त्रियों से तो हम निपट ही लेंगे, आप तो सेना के पीछे की ओर जाकर संचालन व्यवस्था को देखें। अपने साम्राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध तो करना ही होगा। असुरों की हार। देवांतक के 8 प्रबल सेनापति थे, करदम, कालांतक, घंटासुर, तालजंग, दुर्जय, यक्ष्म और रक्तकेश। इनमें से एक एक योद्धा एक एक सिद्धि के सामने जा डटा। उसी समय देवियों और दैत्यों में घोर युद्ध होने लगा। काशीराज की सेना आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी हुई उस अद्भुत युद्ध को प्रत्यक्ष देख रही थी। उस भयंकर युद्ध में दैत्य सेना गाजर मूली के समान कटती जा रही थी। माता अणिमा ने क्रदम को, माता प्रकामया ने कालंतक को तथा माता महिमा गरिमा ने क्रमशः यक्ष्म, तालजंग और दीर्घदंत को मार डाला। फिर तो चारों दैत्य सेनापति भी शीघ्र ही मारे गए।
किंतु असुर सेना निराश ना हुई। इस प्रकार 3 दिन रात्रि भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भयंकर अधिकांश असुर सेना का विनाश हो गया। अब देवांतक को बड़ी चिंता हुई, यह क्या हो रहा है? बड़े बड़े वीर दैत्य इन अबलाओं के सामने धराशायी हो गए। इससे तो मेरा साम्राज्य ही खतरे में पड़ गया। अब तक किसी भी देवता या मनुष्य का साहस नहीं होता था कि छोटे से छोटे दैत्य का भी सामना कर सके, किंतु वह पराजय तो मेरे हाथ से इंद्रासन तक निकाल सकती है। इसीलिए इन स्त्रियों को हराने के लिए मुझे स्वयं ही युद्ध करना होगा। ऐसा विचार कर उसने तीक्ष्ण तलवार हाथ में लेकर घोर गर्जना की, जिसे सुनकर देवता और मनुष्य सभी कांप गए। वह तुरंत ही माँ गरिमा के समक्ष जाकर भयंकर युद्ध करने लगे। माँ देवियां भी पीछे ना रही, उन्होंने उसकी तलवार ही उड़ा दी। अब उसने इतनी भीषण बाण वर्षा की कि 8 सिद्धियां मूर्छित होकर गिर गईं। यह देखकर देवताओं के दल उनकी सहायता करने और दैत्यों से लड़ने लगे। सिद्धियों को मूर्छित हुई देखकर भगवान विनायक ने बुद्धि को युद्ध की व्यवस्था का आदेश दिया। माता बुद्धि देवी ने वहां पहुंचकर घोर गर्जना की, जिससे शत्रुओं के हृदय कांप उठे। तभी माँ बुद्धि देवी के मुख से एक अत्यंत तेजस्विनी, घोर भयंकरी एवं अत्यंत विशाल मुख वाली देवी प्रकट हुई। उनके बाल धरती तक फैले थे तथा मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। यह माता देवी दैत्य दल में घुसकर जिन्हें चाहती उसे उठाकर मुख में रख लेती। इस प्रकार उन्होंने बड़ी शीघ्रता पूर्वक कई कई राक्षस एक साथ उठाकर मुख में रख लिए। अब वह जिधर जिधर जाती उधर ही दैत्य गण भाग खड़े होते। फिर भी वह दौड़ दौड़ कर बहुतों को पकड़ती और मुख में डाल लेती। असुर सेना उसे साक्षात मृत्यु ही समझ रहे थे। इस प्रकार उनके द्वारा अनगिनती वीरों का संहार करते देख अत्यंत चिंतित हुआ देवांतक उस पर भीषण बाण वर्षा करने लगा, किंतु उन बाणों का उसके शरीर पर कोई प्रभाव ही नहीं था। देवांतक के सभी बाण समाप्त हो गए और वह किंकर्तव्य विमूढ़ सोचने लगा कि अब क्या करूं। तभी उसने सुना, अब तू अकेला ही क्या करेगा, मेरे मुख में आकर विश्राम क्यों नहीं करता। वह सजग हुआ, वस्तुतः एक भी दैत्य वहां दिखाई ना देता था। उसने सोचा, भागने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, अन्यथा प्राण देने होंगे। इसलिए वह बिना विलंब किए हुए द्रुत गति से भाग खड़ा हुआ। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय।

11वां अध्याय देवांतक द्वारा अघोर मंत्र का अनुष्ठान करना। देवांतक युद्ध क्षेत्र से भागकर स्वर्गलोक में जा पहुंचा और चुपचाप अपने भवन में मुख ढककर सो गया। उसे अभिमान था कि अभी तक वह किसी से नहीं हारा था। उसका वह अभिमान चूर्ण हो गया। वह समझ गया कि देवता गण आज नहीं तो कल अपना राज्य वापस लेने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि स्त्री सेना के साथ देवताओं को युद्ध करते हुए वह देख चुका था। रुद्रदेव उसकी स्थिति से समझ गए कि अवश्य ही कोई गड़बड़ी हुई है, इसलिए उनके पास जाकर बोले, पुत्र तो इतना उदास क्यों हो रहा है? यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो निसंकोच बता। उसने लज्जा से नेत्र झुकाए और कहा, पिताजी क्या बताऊँ, मैं अपने भाई को मारने वाले विनाशक से प्रतिशोध लेने के लिए काशी गया था। विशाल असुर सेना मेरे साथ थी। मैं जानता हूँ कि काशीराज के पास ना तो कोई बड़ी सेना है और ना अधिक साधन ही, इसलिए उसे वश करना बाएं हाथ का खेल था। किंतु आश्चर्य कि 8 देवियों के सेनाधिपत्व में 8 सेनाएं प्रकट होकर ना जाने कहां से आईं। उन्होंने हमारे सभी सेनापतियों सहित अधिकांश चतुरंगिणी सेना को मार डाला। शेष सेना को अत्यंत भयंकर कृत्य ने निगल लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह कृत्या जिधर जाकर सिंहासन करती, उधर के असुर वीर उनके श्वाच्छोश्वास के साथ खींचते चले जाते और वह उन्हें पकड़कर मुख में डाल लेती। अंत में जब समस्त असुर सेना समाप्त हो गई तो वह मेरी ओर झपटती हुई बोली, अरे अब तक तू अकेला ही क्या करेगा, मेरे मुख में आकर विश्राम क्यों नहीं करता? उसकी उस कर्कश वाणी ने मुझे अत्यंत भयभीत कर दिया और मैं किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भाग आया। रुद्रकेतु बोले, पुत्र चिंता मत करो, भय और शोक को छोड़ दो। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अघोर मंत्र का अनुष्ठान करो। उनका पूजन ध्यान मंत्र जाप होम तर्पण और फिर ब्राह्मण भोजन कराओ। अनुष्ठान पूर्ण होने पर एक अश्व निकलेगा, उस पर सवार होकर रण क्षेत्र में जाने से विजय प्राप्त होगी। देवांतक ने पिता के द्वारा निर्दिष्ट विधि से अनुष्ठान कार्य संपन्न किया। ब्राह्मणों को भोजन कराने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पर यज्ञ वेदी से कृष्ण वर्ण का एक अश्व निकला, जो कि दीर्घकाय सबल एवं अत्यंत दर्शनीय था। उसके मुख से भयानक शब्द निकलता था। उस घोड़े को देखकर देवांतक प्रसन्न हो गया। उसने घोड़े को प्रणाम कर भावना पूर्वक अलंकार आदि से सजाया और पूजन किया। तदउपरांत अपने सेना

की शक्ति में अटूट विश्वास था, इसीलिए उन्हें उनके पुनरागमन के समाचार से अधिक चिंता ना हुई। इस बार के युद्ध में मां सिद्धि देवी की अधिक सेनाएं अधिक सफल नहीं हो सकी। असुर उन्हें हराते हुए आगे बढ़ने लगे। तब भगवान विनायक ने काशीराज की सुरक्षित सेना को युद्ध में भेजा और स्वयं भी सिंह पर आरूढ़ होकर चल दिए। उस समय पाश, परशु और धनुष आदि बाण आदि से संपन्न उनका वीर वेश दर्शनीय था। भगवान विनायक देव की जय बोलती हुई काशी नरेश की सेना असुरों से युद्ध में तत्पर हुई। स्वयं भगवान भी रण क्षेत्र में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही देवांतक बोला, तूने मेरे भाई नरांतक को मारा है ना, उनका प्रतिशोध तेरे रक्त से लेना अनुचित नहीं होगा। फिर भी तुझे प्राणों का मोह हो तो मेरी शरण में आकर अधीनता स्वीकार कर ले। तेरे बालकपन और भोली सूरत पर मुझे तरस आ रहा है। भगवान विनायक ने अट्टहास करके कहा, तुम जैसे कायर को तरस न आएगा तो और किसे आएगा। अरे मूढ़, पिछली बार तो तू प्राण बचाकर भाग गया था, किंतु इस बार नहीं भाग सकेगा, क्योंकि तेरे जीवन की अवधि पूर्ण हो गई, इसीलिए पहले तू अपना पौरुष दिखा ले। देवांतक क्रोधित हो उठा। उसने भगवान विनायक पर भीषण बाण वर्षा की, किंतु भगवान विनायक उसके सभी बाणों को काटते जा रहे थे। उसके बाण दैत्य सेना के संघार में भी लगे थे। दैत्यराज ने अपनी विजय ना होती देखकर माया की रचना की। वह कभी पृथ्वी पर तो कभी आकाश में, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में दिखाई देता। फिर उसने मोहास्त्र का प्रयोग किया, जिससे युद्ध में उपस्थित सभी देवता, काशीराज की समस्त सेना और विनायक भी निद्राग्रस्त हो गए। अब देवांतक ने चक्र के मध्य एक त्रिकोणाकार कुंड बनाकर मांस आदि की हवी देते हुए अभिचार कर्म का आरंभ किया। यह समाचार काशीराज को गुप्तचरों से मिला तो वे साधारण नागरिक के वेश में भी छिपते हुए किसी प्रकार भगवान विनायक देव के पास जाकर उनके कान में बोले, त्रिकालज्ञ प्रभु, देवांतक अभिचार कर्म कर रहा है, यदि वह पूर्ण हो गया तो अजय हो जाएगा, इसलिए निद्रा का त्याग कीजिए। देवांतक को विराट रूप के दर्शन। काशीराज की प्रार्थना सुनते ही वे चैतन्य हो गए और उन्होंने अपने धनुष पर खगास्त्र और घंटास्त्र से अभिमंत्रित दो बाण चलाकर आकाश में छोड़े। बस फिर क्या था, आकाश में भीषण घंटानाद होने लगा, जिससे सभी निद्रित सैनिकों, देवताओं आदि के निद्रा भंग हो गई। वे तुरंत उठकर देवांतक के पास जा पहुंचे और उसके अभिचार कर्म में विघ्न डाल दिए। निद्रा दूर होने का कार्य घंटास्त्र ने, दूसरे खगास्त्र ने असंख्य पक्षी उत्पन्न कर दिए, जिन्होंने समस्त आकाश को पक्षियों से व्याप्त कर दिया, जिनसे सर्वत्र अंधकार छा गया, तथा वे पक्षी दैत्य सेना के वीरों को उठा उठा कर भक्षण करने लगे। इससे समस्त सेना में खलबली मच गई। अब अत्यंत क्रोधित हुए देवांतक ने घोर युद्ध किया, किंतु भगवान विनायक के समक्ष उसके सभी प्रयास निष्फल रहते। तभी उसने विराट रूप के दर्शन किए। मनुष्य का शरीर और हाथी का मुख, धरती पर चरण और आकाश को स्पर्श करता हुआ मस्तक, वह उस रूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और भयभीत हुआ। तभी उन्होंने उसके मस्तक पर अपने दांत से भयंकर प्रहार किया, जिससे वह चित्कार करता हुआ सैकड़ों खंडों में छिन्न भिन्न होकर धरती पर बिखर गया। उसके मुख से एक ज्योति निकलकर भगवान विनायक के मुख में प्रविष्ट हो गई।

अपने स्वामी की मृत्यु हुई देखकर समस्त दैत्य सेना वेगपूर्वक इधर उधर भाग गई। देवगण प्रसन्न होकर दुदुबियां बजाने लगे। काशी राज की सेना में विनायक देव की जय गूंज उठी। विजय वाद्य बजने लगे। दिशाएं स्वच्छ हो गई और उन्मुक्त वायु चलने लगी। इंद्र आदि देवगण वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। विमोचिता वयम बंधाद देवांतक कृताद विभो उपेंद्र इव देवेंद्र कार्यम यस्मात कृतमत वया। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हम राक्षस राज देवांतक के बंधन से मुक्त हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने उपेंद्र के समान पराक्रम दिखाया है, इसलिए आप संसार में उपेंद्र भी कहे जाएंगे। अब हम भय रहित रूप से अपने अपने अधिकार का उपभोग करेंगे तथा दीर्घ काल से अवरुद्ध हुए स्वाहाकार और वशटकार के स्वर पूर्वकृत सर्वत्र सुनाई देंगे। स्तुति करने के बाद सभी देवता अपने अपने स्थानों को गए। इंद्रदेव ने स्वर्ग के समस्त असुरों को बाहर खदेड़कर पुनः देवराज्य की स्थापना की। असुरों में शोक और देवताओं में आनंद व्याप्त हो गया। युवराज विवाह तथा भगवान विनायक देव का जाना। काशीराज और उनके मित्र राजाओं ने भी भगवान विनायक का पूजन और स्तुति की तथा दूसरे दिन उन्होंने सभा में आकर अमात्यों से कहा, अमात्यगण, मैं भगवान विनायक देव को युवराज का विवाह करने के लिए इनके माता पिता से मांग कर लाया था, किंतु बहुत समय तक असुरों के आक्रमण होते रहने के कारण युवराज का विवाह निरंतर टलता रहा और भगवान विनायक को भी इनके माता पिता के पास नहीं लौटा सके। यद्यपि काशी में इनका निवास हमारी सुख समृद्धि और अभ्यता का कारण हो रहा है, तो भी इनके माता पिता को घर न लौटने के कारण चिंता हो रही होगी, इसलिए हमें शीघ्र ही युवराज का विवाह करके इन्हें यथाशीघ्र इनके निवास स्थान पहुंचा देना चाहिए। सभी सभासदों ने महाराज की बात का समर्थन किया। सर्वत्र युवराज के विवाह के निमंत्रण पत्र भेजे गए। मगधपति भी अपनी कन्या को लेकर वहां आ गए। भगवान विनायक देव ने विवाह कार्य संपन्न कराया। कई दिनों तक हर्षोत्सव मनाया जाता रहा। तदउपरांत सभी आगत जन काशी राज से सम्मानित होकर अपने अपने स्थानों को लौट गए। अब भगवान विनायक का पूजन करके काशी राज ने उनकी आज्ञा चाही। भगवान विनायक बोले, राजन, यह युवराज का विवाह करने के लिए कुछ ही दिनों के लिए आया था, किंतु अब तो बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं। माताजी पिताजी मुझे याद करते होंगे, मुझे भी उनकी बड़ी याद आ रही है, इसलिए अब शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए। भगवान विनायक का आदेश पाकर महाराज ने रथ तैयार करने का आदेश दिया और रथ के आने पर भगवान विनायक के साथ स्वयं भी उस पर सवार हुए। नगर निवासियों को उनके वियोग असहनीय था। वे उनसे कुछ दिन और रहने का आग्रह करने लगे। उन श्रद्धावान भक्तों का अत्यंत आग्रह देखकर भगवान विनायक देव ने समझाया, सुहृदजनों, इस समय तो मुझे जाना ही होगा, किंतु जब कभी आप पर कोई विपत्ति आवे मुझे याद करना, मैं आपकी सहायता करूंगा। मेरी स्वयं की आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं भी यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। न चितस्य समाधानम भवेदवे चिंतनेन मे मम मूर्ति नम्रदा कृतवा पूजयन्तु ग्रहे ग्रहे। यदि आपके चित्त का समाधान मेरी चिंता से ना हो तो मेरी मिट्टी की मूर्तियां बनाकर घर घर में स्थापित करें और उसमें मुझ विनायक की भावना करके भक्ति भावना पूर्वक पूजन करें। लोगों को संतोष हुआ। सभी भगवान विनायक की जय बोलने लगे। उन्होंने रथ की परिक्रमा की। महारानी ने भी अपनी सहेलियों के साथ आकर इनकी अभ्यर्चना की और उसके पश्चात रथ चल पड़ा। जब तक नेत्रों से ओझल

0: ना हो गया हो तब तक सभी एक टक उधर ही देखते रहे। वायु वेग से चलता हुआ रथ कश्यप आश्रम जा पहुंचा। महाराज और विनायक दोनों उतरकर महर्षि दंपति के चरणों में पड़ गए। राजा को आशीर्वाद देकर उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। काशीराज ने उन्हें असुरों के आक्रमण और भगवान विनायक के पराक्रम की समस्त घटनाएं यथावत सुनाई, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन मुनिवर की आज्ञा लेकर महाराज अपने नगर को लौट आए। भगवान डुंडीराज गणेश की स्थापना। काशी के घर में भगवान विनायक की मूर्तियां स्थापित की गईं। महाराज ने भी डुंडीराज गणेश जी के नाम से एक मूर्ति की स्थापना राजभवन में करवाई। उन मूर्तियों के पूजन प्रभाव से घर घर में आनंद छा रहा था। जिसने जो भी कामना की वह पूरी हुई। उधर माता पिता के पास रहते हुए भगवान विनायक देव को कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे। उन्होंने अपने माता पिता से निवेदन किया कि जननी एवं जनक, अपने जिस अभिप्राय से तप करके मेरे प्राकट्य की इच्छा की थी वह कार्य पूर्ण हो चुका है। त्रिलोकी को त्रसित करने वाले समस्त दैत्यों का संहार हो गया है तथा ऋषि विप्रादि निर्भय रूप से यज्ञ आदि कार्यों का संपादन कर रहे हैं। इस प्रकार धरती का भार उतर गया। अब मुझे अपने धाम को जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान विनायक के वचन सुनकर एक बार तो मुनि और उनकी पत्नी अवाक रह गए। फिर कुछ संभल कर महर्षि ने कहा, देव अभी कुछ काल और निवास कीजिए। उन्होंने कहा, अब तो मुझे जाना ही होगा, यहाँ मेरा कोई कार्य शेष नहीं रह गया है ऋषिवर। माता ने सजल नयन से पूछा, अब कब दर्शन होंगे पुत्र? भगवान विनायक बोले, मेरा दर्शन भवानी मंदिर में पुनः कर सकोगी माता। और यह कहकर विनायक भगवान अदृश्य हो गए। महर्षि ने उनकी अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित की और नित्य प्रति उसकी यथाविधि पूजन करने लगे। विनायकस्य देवस्य श्रवणात् सर्वसिद्धिदम् धन्यम् यशस्य मायुष्यम् सर्वोपद्रवनाशनम् सर्वकामप्रदम् सर्वपाप संशयनाशनम्। भगवान विनायक देव गणपति का यह चरित्र सुनने पर सभी सिद्धियां देने वाला है। इनसे धन धान्य यश एवं आयु की प्राप्ति तथा उपद्रवों का नाश होता है। यह सभी कामनाओं को पूर्ण संचित पापों को नष्ट करने वाला है। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ FM अध्यात्म ज्योति 104.8।

छठा खंड अध्याय प्रथम उग्रसेन सिंधु का जन्म। त्रेता युग था, मिथिला देश के गंडकी नामक नगर में चक्रपाणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कमी नहीं थी, इस कारण राजा तो सुखी थे ही, प्रजा भी सब प्रकार से निर्भय एवं निरोग रहती थी। सदैव अपने राजा की जय जयकार करती रहती थी। परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान, व्रत, अनुष्ठान आदि किए, किंतु सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने थी कि राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए। बहुत विचार करने पर भी इसका कुछ समाधान दिखाई नहीं देता। इसी अवसर पर वह महर्षि शौनक का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, राजन, तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति यहीं हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, पुत्र होगा तो कब? मेरी आयु ही बीती जा रही है मुनिराज, मुझे सब स्पष्ट कहने की कृपा करें। शौनक जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु उसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान सूर्य को प्रसन्न करना होगा। इसके पश्चात महर्षि ने राजा को सूर्य उपासना का विधान बताया और बोले, इस अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर भगवान सूर्य की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी, फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं रहेगी। यह व्रतानुष्ठान एक मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी देवज्ञ ब्राह्मण को एक दुधारू गाय दी जाए और 100,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर भगवान सूर्य देव की पत्नी सहित 100,000 नमस्कार करना भी आवश्यक है। मुनि चले गए। राजा ने अपनी भार्या के सहित भगवान सूर्य की उपासना आरंभ की। अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी उग्रा ने स्वप्न में सूर्य देव को अपने पति के रूप में देखा और ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। प्रातः काल उन्होंने अपने स्वप्न की बात राजा को सुनाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ। बोले, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव है, किंतु मेरे मन में कोई विकार नहीं आया है, इसलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। रानी चुप हो गई, किंतु उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उनके शरीर का तापमान तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उष्णता दह का रूप लेने लगी। इस कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था हुई, तो भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दह को सह सकने में समर्थ ना थी। अंत में प्राण संकट में जानकर उन्होंने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय में ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो दुख में भर गए, परंतु उग्रा की विवशता जानकर वे कुछ कह ना सके। उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ, वह एक रौद्र बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा। उसके रुदन स्वर से धरती आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा एवं मुख कुरूप थे, केश लाल वर्ण के थे तथा हाथ में त्रिशूल उत्पन्न लिए हुए था वह बालक। उसके कारण समुद्र जीव भी व्याकुल हो रहे थे।
अतः समुद्र देव स्वयं मानव रूप धारण कर कर और बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, राजन, वह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे। देखिए, बालक कितना तेजस्वी है। जिसकी ओर देखना भी दुष्कर है, इसे संभालिए। बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने भी हर्षित मन से उसे गोद में लेकर दुग्धपान कराया। उसके नाम सिंधु, उग्रीषण और विप्रसादन रखे गए। वह शीघ्रता से वृद्धि को प्राप्त होने लगा। उग्रीषण का प्रबल पराक्रम तथा वर की प्राप्ति। उग्रीषण स्वभाव का क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बाल्यकाल में ही मनुष्यों से तो क्या, हाथियों से टक्कर लेने वाला। उसने छोटी सी आयु में ना जाने कितने हाथी आदि केवल मुष्टि प्रहार से ही धराशाही कर दिए। ना जाने कितने वृक्ष गिरा दिए गए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्ष होता था। शीघ्र ही किशोरावस्था को प्राप्त उग्रीषण ने अपने माता पिता से एक दिन में कहा, मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति दी। उन्होंने घोर वन में जाकर एक सरोवर के तट पर तपस्या आरंभ की। वह भूखा प्यासा रहकर घोर तपस्या करने लगा। उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करते हुए 2000 वर्ष व्यतीत कर दिए। शुधा, पिपासा, धूप वर्षा आदि सहते सहते सूख कर कांटा हो गए। भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर अभीष्ट वर मांगने का आदेश दिया। उन्होंने उनके चरणों में मस्तक रख कर निवेदन किया, प्रभो, मैं सभी देवता मनुष्य आदि को जीत कर तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लूं और मेरी मृत्यु कभी ना हो। भगवान सूर्य बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो, इसे कंठ में लगाए रहना। इसके रहते हुए देवता मनुष्य नाग पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन रात्रि प्रभात या सायंकाल कभी भी ना मार सकेगा। जब यह पात्र हट जावेगा तभी अपने अंगुष्ठ के नखाग्र पर करोड़ ब्रह्मांडों को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष तुम्हें मारेगा। तुम त्रिभुवन को जीतने में सफल होगे। वरदाता भगवान सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर उग्रीषण ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण किया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का समाचार सुनाया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौंप दिया तथा स्वयं तपस्या हेतु वन में चले गए। उग्रीषण के राज्य का विस्तार होना। उग्रीषण ने राज्य होते ही राज्य का विस्तार आरंभ किया और अमात्यों को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े समय में ही उन्होंने अनेक राजा वश में कर लिए तथा जिन्होंने सामना किया उनके राज्य छीन लिए गए। इस प्रकार उन्होंने क्रूरता पूर्वक रक्तपान करते और उनके सर्वत्र आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी समस्त देव सेना छिन्न भिन्न हो गई। देवनारियां सतीत्व की रक्षा के लिए पर्वतों की कंदराओं में जा छिपी। उग्रीषण ने स्वर्ग पर अधिकार कर अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हार कर भागते हुए देवराज इंद्र भगवान नारायण के पास वैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान हो स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रीषण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गए। भगवान ने चक्र चलाया तो उन्होंने मुष्टि प्रहार से चक्र को दूर फेंक दिया।
उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने उसे चूर चूर कर दिया। भगवान बड़े चकित हुए, फिर वह समझ गए कि यह वर के कारण प्रबल हो रहा है। इसीलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा, असुरराज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव मुझसे कोई अभिष्ट वर मांग लो। वह बोला, देवाधिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे गंडकी नगर में सदैव निवास करें, बस इतना ही वर अपेक्षित है। भगवान श्री हरि ने स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने वैकुंठ की व्यवस्था के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहां एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा, आप चाहें जिन देवताओं के सहित यहां सुख पूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा, प्रभु, आप तो इस मृत्यु धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा जगदीश्वर? रमानाथ ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं एवं मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्य पूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर अपनी विजय गाथा सुनाता रहा, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उसे आशीर्वाद प्रदान करते रहते। परंतु वे यह कभी नहीं पूछते कि तू शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी रखना है या नहीं इत्यादि। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया। घोषणा की गई कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ दान उपासना आदि ना करे, मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबो दी जाएं अथवा धरती में गहरी गाड़ दी जाएं। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रेशन मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राज्य भय से सबको वही करना पड़ा जो विद्वान एवं धर्मज्ञ पुरुष, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे। नगर छोड़कर जंगल में चले गए। सर्वज्ञ असुरों का जोर बढ़ गया। मांस मदिरा सेवन, सतीत्वनाश, चोरी, मिथ्या भाषण, छल कपट आदि की घटनाएं सर्वत्र होने लगी। इस प्रकार जहां देखो वहीं आसुरी कर्म ही दिखाई देते थे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।